0: After the commercial break.
1: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से जायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवाबी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रابطہ कर सकते हैं।
0: We'll be back right after the commercial break.
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, जहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से जायद तलबा तालबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रब्ता कर सकते हैं।
1: मावेले माले दा शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू दा पारा शारजी ता सिंगल आर शमा।
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की दा शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स, फोन 09382732695।

थैंक यू अभी थैंक यू देर मेरे वाणी जी डे टाइम बाद हम प्रोग्राम में देखे अभी मुंगते सलाम ने मेरा लिख दिया थैंक यू सो वेरी वेरी मच जी खुशहाल उसे आवाज उसे रखे अभी रुचि।

लाला बिल्कुल दा समंगा दा बिल्कुल दा बिल्कुल दा दा बिल्कुल समंगा ओरिजिनल प्रोडक्ट ही रखेरा गोरा सिफात ऑनियन यानी शिया प्याज वाले से कम शैम्पू रे वर्सरा जैतून हर्बलाइल दी वर्सरा फेस वॉश थे ब्यूटी क्रीम दी वर्सरा ब्याह फेस वॉश थे और ब्याह वर्सरा समंगा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ही 24 केबल गोल्ड ब्लीच सिकम देखे अगस्त जी तो बिल्कुल दा समंगा प्रोडक्ट ही जी और दा ओरिजिनल लिखा पर एक नो नंबर निश्चित जी दा कम चीज दा अगस्त देखे को रखे मेरा इस्तेमाल के देखे इंशाल्लाह दुआगाने बरत जरूर के देखे रखा सबक है जी दुआगाने बके देखे रखा सबक हुई जी दुआगाने बके देखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह शानी शानी नंबर यादव साथी जी खातिर जान वतन इजाजत वाली बस्ती पर 345 915 40 और 28 बस्ती पर 345 915 40 और 28 पदे नंबर वाले सो किसी पदे नंबर वाले दखेरा पदे नंबर वाले दखेरा पदे नंबर वाले दखेरा पदे नंबर वाले दखेरा पदे नंबर वाले दखेरा पदे नंबर वाले दखेरा कालो के जी सिपर 345 915 40 28 फल गोरबा खातिर जान बदोगानो क्या साथ आई दो लुआ लापामान

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।